राम नाम प्रकाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के बड़ भाग बडेरे, बिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृपास, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, हे भागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, थिरक जीवे थिरक जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंगत जित रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम, जां आहर हर ज्यो परिया, सैल पत्थर मैं जन तू पाए, ता कार्य कागे कर तरिया। मेरे मां दूजी सत्संगत मिले सु तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुखे का शरिया राव। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर जग समाए ठाकुर, काहे मन पो करिया। ऊडे ऊड़ आवे सह को सा, जिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निधान दस आशिधान, ठाकुर कर तर धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरखी कौम कहा सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम पारा, सब त्यावै सब त्यावै तुझी, हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जी आका दा तारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर रापे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सरब निरंतर जी, हर एको वृक्ष माणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुझ बिने और न जाना, तू पार ब्रह्म बेंत बेंत जी, तेरे क्या गुण आक वखाणा। जो सेवा है जो सेवा है तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाणा। हर त्यावै हर त्यावै तुझी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिन का हो सुखवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सालाहन तुझी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक रहर पूजा जी, तपता पै जपै बेंता, तेरे अनेक पढ़ै बो सिमर शास्त्र जी, कर क्रिया काट करम करंता। से भगत भरे जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद ब्रख अपरम प्रकर्ता जी, तुझ जेवड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई। तुदी आपे भावै सोई वरतै जी, तुम आपे करै सोई, तुदी आपे सिर चो पाई जी।

राखो सरमा पात साहे दसवें कभी उपाग बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट वह तुम कहो आप आदय मोहे बचाओ सुखी वसै मोर परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा नि कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊ जो पर चाहूं सो तुम से पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप आदय मुझे उभरिया मरण काल का त्रास निभरिया हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री अच्छू जो करियो रक्षा राख लो में रखन हारे साहेब संत साहेब प्यारे दीन मन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा गुप्तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विश्र मृगा सा सकल काल का के आत्मा सा जौन काल जोगी शिव की ओ वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो जौन काल सब लोग सवारा नमस्कार रहता है हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दय जक्षर उपजायो आद

बैठा कहूं सिमर पर शंकर कैठा सगरी शिष दिखाए चंबो आज हुआ स्वरूप शंभो अब रक्षा मेरी तुम करो सिखुबार सिख संघरो दुष्ट जीते उठो तुत पाता सगर मलेज करो रण गाथा जे अज तब शरण नहीं पारे तिनके दुष्ट दुगत हाँ मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट चपटारे जो कल को एक बार दिया है ताके काल निकट न आए हैं रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट तत्काला कृपा दिख तन जाए हरियो ताके ताप तनक मोहरियो रिद सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट चाह छव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुमहारा कार पास से ताए उबारा जिन नर नाम

कुरान अने कह मत एक न मानियो। सिमर शास्त्र वेद सबैबो भेद कहे हम एक न जानियो। श्री अस्पार कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो ए बखानियो।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहत तूरे। मुंदावनी महला पंजवां।

पवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिम

चक्र चिहिन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनपौ प्रकाश

मैं आशा रखी चित मह मेरा सबो दुख गवाए जियो सतनाम वाहिगुरु जी सलोक महला तीजा।

जम का फाह गलो न कटिया फिर आवह जाए जिनका पूरब लिखिया सतगुर मिलया तिन आए अन दिन नाम त्याई दे नानक सच समाए महला तीजा।

नानक गोर के भाण जे चल सज सच समाहे पौड़ी आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया गुरमुख भय निरास परम सुख पाया विचे ग्रह उदास अल्य पत लिव लाया ओ ना सोग विजोग ना व्यापाई हर भाणा।

कला कलाई को ओंकार सतगुरु प्रसाद जय करकृता के कृत्य का ही विचार तत्प्रगा सविला सिरो सृजनहार तुम गाओ मेरे निरपो का सविला हो आर्जित सुरे सदा सुख हो राहो नित नित जेड़े संभालियन देखवा देहार तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कौन संवार संबत साहा लिख्या मृ कृपाओ तेल देहु सजन सिरसरिया जो हो वै साहिब सो मेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हरा सिमरिय नानक से दे रागा सामेला पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरु एको वेस अनेक बाबा जय कर करते किरत होए सो ग्राह कुड़ाए तोय राहो विश्वे चसिया कड़िया पैरा थिकी वारी माहुआ सूरज एको रुत अनेक नान करते के वेस

भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत काश बेगन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दीन जागै, प्रभु कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नाउ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सो भला, प्रभु कै सिमरन सो फल फला, से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक पा कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उधरे मूचा, प्रभु कै सिमरन कृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किश सूझै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरह से तनवंते, प्रभु को सिमरह से पतवंते, प्रभु को सिमरह से जन प्रवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह से बेमोहताजी, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजी, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरनते लागे जिन आप दयाला, नानक जान की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरह बस है हर नेरे, संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज सम्मानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद झूनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरह से जान जिन को प्रभ माया, नानक तिन जान सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपति जह मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महापयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चलै, जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जप हो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जापत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तरै, अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जेहे मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनेक बिघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनेक जोन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हाउ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जप हाउ मन रंग, नानक पाइय साध कै संग, जेहे मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जिह पैंडाए महा अंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को ना सियानु, हर का नाम तह नाल पशानु, जह महा पयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जह त्रिखा मन तुझ अकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट।
हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कह हर नाम निधान, पार ब्रह्म जान की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन कै बिरत बबेक है, हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रेपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर ना भंग, हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन सोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपाए, हर का भगत प्रगट नहीं छपाए, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात ए हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसाए, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश अवर ना होए, नानक गुर मुख नाम पावै, जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य क्रिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कार राती, वरत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड प्रथमी फिरै चैर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अग्न माहे होमत परान, कनक अशव है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावै, ताओ पी होमे मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ देह छुटै, गर्भ गुमान न मनते हुटै, सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कबहू न बिखया टरै, जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच, बहुत सियाणप जम का भाव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन न त्रापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै, छूट सुनाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी सो बालो रै, साध संग ए होमै शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस काओ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन आपुने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निरतन कौ तन तेरो नाउ, निथावे कौ नाउ तेरा थाउ, निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपने गात मित जानो हो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार अन्या सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया ते सचीत रख, नानक निभ ही नाल अष्टपति,
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਿਸਥਾ ਤੁਜਹਿ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸ ਹੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਵੈ ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਧ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕਉਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰ ਤਹਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਛ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਊੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੂੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੂਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਚੀਤ ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ ਆਨੰਦ ਕੀਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗ ਹੈ ਅਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਏਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਪੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹੈਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਨਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਾਸ਼ ਬਹੁਰ ਸਾਹੁਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਮਾਥੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਹ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ਤਾ ਕਉ ਹਾਸ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਏ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ
मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साधकी शरण, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल देह, नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होगत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरारथ दाम, तन तन ते जन जिह घट बस्यो हर नाउ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गांड लावत, जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेशय आप न करै, आवत जावत जन मै मरै, जिसका अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक ऊन जान चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे मन आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब काश जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लई लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जाप नानक हरि सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परमगत पावै, जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना, जिह प्रसाद रंग रास भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभाव है, जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय, जिह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुख ताकु जस रसन बखानै, जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पात सेती घर जावै, जिह प्रसाद अरोग कंचन देही, लिवलावो तिस राम स्नेही, जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत, जिह प्रसाद तेरे सगल शिदर ठाकी, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै, मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे, जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे, जिह प्रसाद अपूखन पहरी जय, मन ते ससिमरत क्यों आलस की जय, जिह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन ते स प्रभ कौ कबहु ना बिसारी, जिह प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए, प्रभ अपने मना जिन तेरी, मन बनत बनाई, उठत बैठत साधत सहते आई, तिसहते आए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है, जिह प्रसाद करह पून बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी, जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहौ सदा अनूप, जिह प्रसाद तेरी नेकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जसका है, जिह प्रसाद सुनै करण नाद, जिह प्रसाद पेखै बिसमाद, जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चलै है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परमगत पावा है, जिह प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो, गुरु प्रसाद नानक मन जागहो,
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸਹਿਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਪਸ਼ੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਵੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋ ਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰਸ ਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ੁ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਨ ਹੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਾਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਭੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੌ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਮਨ ਆਪੋ ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ
ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा दशम दर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दे आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक। उरत हरै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निस्तारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिशन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै। राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जानै असथूल। चहवर ना कहो दे उपदेश नानक उस पंडित कहो सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया
दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं बेयोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाउ जित जित घर राखे तैसा तिन नाउ आपे करण करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए आनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म त्यहन धारै कई कोट कब का विचारै कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते का अंत न पावै कई कोट पहे अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया शरम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजी रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत धारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरै सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बहुजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मै चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब केश प्रभ कै हाथे कई कोट पहे बै रागी राम नाम संग तिन लेव लागी कई कोट प्रभ कौ खो जंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मंगै सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो बिसथार कई बार पसर्यो पसार सदा सदा एको एकंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताकांत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारै एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पै साध साध ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन कौ सासा सुमारी नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहारण है जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावण करणै जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ भावै मनुख गत पावै प्रभ भावै तां पाथर तरावै प्रभ भावै बिन सास्ते राखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै प्रभ भावै तां पतत उधारै आप करै
आपन बिचार है दोहा सिरिया का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुक ते क्या होया वै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दै दिस धावै निमुख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिसे अपने भगत दे नानक ते जान नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु ना आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा कौ अपने करे बख्सीस ताका लेखा ना गने जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्ब को नाथ आज्ञा करी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू नींद चिंद ब्योहार कबहू ऊप आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करे बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बहे बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मैं आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवि ही रहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक ज्योन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यो सुवंगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै ज्यो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोय कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बहुर ना आवै अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते इक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मै जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिश्राम नानक प्रभ कह सदगुरुबान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जीवनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कार गरबावै तृण समान कश संग न जावै बहु

जब लग जाने मुझते काश होए ताबे सुखो सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारै को बैरी मीत तब लग नेह चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै। सहस खटे लख को उठतावै तृपत न आवै माया पाछै पावै। अनेक भोग बिख्या की करै नह तृपतावै खप खप मरै। बिना संतोख नहि को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए। करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप। आप प्रभ सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग। सब ते दूर सबहू कै संग। बूझै देखै कर बबेक आपे एक आपे अनेक। मरै न बिनसै आवे न जाए नानक साध ही रहा समाए। आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्थार सब काश उसका ओ करने हार। उस ते भिन्न कहो किश होए थान तनंतर एक सोए। आपो नहीं चले तो आप करने हार। कौतक करे रंग अपार मन महे आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरलै चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी। श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक। संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संतो कह दुखन आरजा कटै। संतो कह दुखन जमते नहीं छुटै। संत कह दुखन सुख सब जाए। संत कह दुखन नरक मैं पाए। संत कह दुखन मत होए मलीन। संत कह दुखन शोभा तहीन। संत के हते कौ रखे न कोए। संत कह दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै। संत कह दुखन ते मुख पवै। संतन कह दुखन काग ज्यों लवै। संतन कह दुखन सर्प ज्यों पाए। संत कह दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए। संतन कह दुखन कृष्णा मैं जलै। संत कह दुखन सब को शलै। संत कह दुखन तेज सब जाए। संत कह दुखन नीच नीचाए। संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पिही गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई। संत का निंदक खेन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन। संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग। संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख मह दुख। नानक संत पावै ता उसका पी हुए मोख। संत का दुखी सदा अपवित। संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी कौ डान लागै। संत के दुखी कौ सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी। संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्मै मरै। संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी को नाहीं ठाव। नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दुखी अध बीज ते टूटै। संत का दुखी कितै काज न पहुँचै। संत के दुखी को उद्यान प्रमाइयै। संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी कौ अवर न रखन हार। नानक संत पावै तां लए उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत। संत का दुखी साध मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पाया नानक ज्यों तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए। संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए। संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजे ना आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न त्रष्ट है कोई जैसा पावै तैसा कोई हो।

अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरहो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरह। हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन किरपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमूलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत हो तो उधार, आप तर लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहो तिने धान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम सांत रिद नावनिद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदारसी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए।

तापिया न जाए, किता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मानु, नानक गावीए गुणी निदान, गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा सुमाई, गुरु सिर गुरु गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई, जे भव जाना का नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देव जाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जित सभावा, विन भाने के नाए करी, जेती सिर ठोपाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देव जाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए, चंगा ना और खाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर नाया वही ता बात न पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोय न सुजई, जे तिस गुण कोय करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनास, सुनै तर तवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा

कौन कूत। कीता पसाऊ इको कुवाऊ, तिसते हुए लख दरियाऊ। कुदरत कवन का विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाऊ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दाता।

अमत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हुए अखरी नाम अखरी शालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव ते पाहे जेता कीता तेता नाउ विण ना वै नाहि को थाउ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार परियै हथ पैर तन देहे पानी धोतै तो उतरस के मूत पलीती कप्पड़ होए दे साबून लइयै उह धोए परियै मत पापा कै संग उह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहि कर कर करना लिख लै जाहु आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आव जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगा तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे हुआ लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखण लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुतमा हो न कोई जा करता सिर ठीक कौ साजे आपे जाने सोई किव करया का किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुवै नानक जी कुआ पाओ जाने अगै गया न सोहै पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़ कोड़क पाल थके वेद कहनिक वात सह सठारा कहनक तिबा सुनु इक धात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानी है समुंद साह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना हुवनी जे तिस मन न विसरै अंत न सिफती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण

नावे वड़ुचाहु वै कोई ति सूचे कौ जाने सोए। जीवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए। किते मंगह जूद अपार कितिया गणत नहीं विचार। किते खप तुटह बेकार किते लै लै मुकर पाहे। किते मूरखा ही काहे किते आदु भूख सदमार। ए पैदा तेरी दातार बंद खलासी भाणे हुए हु राख न सकै कोए। जे को खाए कि आखन पाए ओ जाने जितियां मुँह खाए।

एक कुबेर, आसन लो एलोय पंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वे कैसर जनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद नीलन आद नाहत, जुग जुग एक कुवेश, एक दूजी बहु लख होए, लख हो वह लख वीश, लख लगे डाया की है एक नाम जगदीश, एत राह पत पवड़ियां चढ़िया हुए की।

कोड़ आनंद शर्म कंड की बाणी रूप चिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी है सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म कंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लोक रह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहार तिथे खंड मंडल वर भांडो जे को कथै तंत अनंत तिथे लो लो आकार जिव जे हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताऊ भांडा पाओ मृत तटाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक न

गयम सकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै चंतव प्रसाद। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख। को कह न सकत केहे अचल मूरतन भव प्रकाश मितोज कही जय।

हैं, पीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, स्वर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजेय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, भुजंग प्रयाछंद, नमो सर्वमानी समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते, समस्ति बेभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो वस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो कूप कूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सर्वं परनाशी, अनूपे अरूपे समस्तु निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता, दो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग, अचेदी अपेदी अनामंग अकामंग, समस्तो पराधी समस्तस्ततामंग, तेरा जोर चाचरी चांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं, अपेय हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयाछंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमस्तुंग निर्णाते, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृश्यंग, नमो सर्व कृष्ण, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अपीजे, समस्तं प्रसीजे कृपालंग स्वरूपे, कुकर्मंग परनासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी, चरपट चंत्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले।

सर्वकालु सर्वकालु सर्वकोपनकाल जतर गतर विराजहि अवतूत रूप रसाल नाम तामना जात जाक रूप रंग नरे आद गुरु कुदार मूरत जाओ नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेकता मुह न जाहे सरमान सर्वत्र मान सदय मान तता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जे बेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चकर बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जा पीजे जाप आदेवनाद मूर्था प्यु सब जिथाप परम रूप नित मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो स्वयं पव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख पेश अंगरागना रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ठतिक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नात्मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेद सर्व शास्त्र न जान जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाक नित भक्त नित कोट सुमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज देवान दे राजान राज पानान पान देवान देव मा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपांग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन बाढ़ चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आ चिज देश है के आ भिज पेश है के आ गंज कर्म है के आ भंज भरम है के आ भिज लुक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण है के बेभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्व अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीन है के कै अधीन है के रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बे है के गैबुल गैव है के अफुल गुना है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रही मैं के कर्मं करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग ही में के अकल अलाम के साहिब कलाम
کہ حسن الوضو ہے تو معمول رضو ہے ہمیشہ السلام ہے شلیکت مدام ہے غنی مل شکست ہے غریب الفرست ہے بلند المکان ہے زمین الزمان ہے تمیز التمام ہے رضو الندان ہے حریف العظیم ہے رضائق یقین ہے انیک الترنگ ہیں اپید ہیں اپنگ ہیں عزیز النواز ہیں غنی ملک راج ہیں نرکت سروپ ہیں ترمکت بپوت ہیں پربکت پربا ہیں سجگت سدا ہیں سدیونگ سروپ ہیں اپیدی انوپ ہیں سمستو پراج ہیں سدا سروساج ہیں سمست السلام ہیں سدیول اکام ہیں نرباد سروپ ہیں اگاد ہیں انوپ ہیں او انگاد روپے اناد سروپے اننگی انام متر پنگی ترکام متر برگنگ تربادی اگنجی اگادی سبنگ سرپاگی سسربا انوراگی ترپوگت سروپے اچھے جہیں اچھوتے کندرکنگ پرناس ہیں پرتول پرواس ہیں نرکت پربا ہیں سدیونگ سدا ہیں بپوگت سروپے پرجگت انوپ ہیں نرکت سدا ہیں بپوگت پربا ہیں انکت سروپے پرجگت انوپ ہیں چاچری چند اپنگ

दास हैं, धंध हैं, बंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलिख हैं, अपिक हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, नित्य हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चिरपट चंतव प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युगता, सर्वंग मुक्ता, सावल चंतव प्रसाद, नमो नरक नासी सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं वेपूते, परमात्म परमाथे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध वेपूते, अनंगी अनामी, त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभाह अजय है, अजाह भगवती चंत्व प्रसाद, कि जाहर जहूर है, कि हाजर हजूर है, हमीसल सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुस्नल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राजक रहीम है, कि रोजी देहंद है, कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है, कि हुस्नल जमाल है, गनीमुल किराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकं प्रणास है, बहसुल निवास है, कि सर्वल गवन है, हमीसल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अदीश है, अदीशल अलेख है, हमीशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो बेभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, मदपार चंद के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, कि मितो अपांग है, मदपार चंद त्व प्रसाद, मुनमन प्रणाम, गुनगन मुदाम, हर बर अगंजु, हर नर पर पांजु, अनगन प्रणाम, मुनमन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अन पवनास, मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनछेज अंग आसन अपंग उपमा पार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिशविस अपांडु, जल थल महंत, दिशविस बेअंत, वन पवनास, त्रितर तुरास, आजान बाहु, विक सदाहु, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड के आल, गुरवर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, अजिज नाबात, अनचंज गात, अन रंज बात, अन टुट भंडार, अन डट अबार, आडिट धर्मु, अत टीठ कर्मु, अन ब्रन अनंत, दाता महंत, हर भूल मना चंतव प्रसाद, करुणालय है, रकालय है, कलखंडन है, महमंडन है, जगतीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वभारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से, कलखंड से, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, तपा तप है, कृता कृत है, मृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी त्रित है, मृतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, मृता मृत है, अजबा कृत है, मृता मृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, कुरुणालय है, निप नायक है, सर्पायक है, पावभंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रया चंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे।

रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाते अजो नियमो नि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग परनासी करिमूल कनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विगनी में हरियंग करियंग करिमूल रहीमे चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते।

वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कार नौ निध आवै ताय सब

तरसन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म

बिंद बिंद चुक चुक होए रहाउ। वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे। इको ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जियो डरत है अपना, कैस्यों करी पुकार। दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब दातार जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। अमृत वेले दे दीवान सजे, आप समूह संगतां ने हाजरियां भर के सतगुरु जी के पावन पवित्र दर घर दियां खुशियां प्राप्त कीतियां हन। गुरदेव जी कृपा करन, सबना दी हाजरी दर प्रवान करन, दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन।

गुरुग्रीवाद अंतर्जामी तंत्र सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जाग दी जो हाजर हर जो आप जी बाणी दे सत्कार जो बेअंत गुरसिख माई पयो आप जी बाणी दे सत्कार जो बेअंत माया पेटा प्रदाव जन सरण सिखी दान प्रोसा दान चन्ना कमला प्यार बख्शना खजाने पर पुरख ने सो आओ गुरु प्यारे सत्संग जो कीर्तन की इनिक सेवा प्रवान करनी होइया भुलां चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरण करिए कथा दे सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले उन्हां पासों अज दे श्री मुखाक दी विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरण करिए दास लोपति प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं आशा रखी चित मह, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतनाम वाहिगुरु जी। तनासरी महला पहला।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, गुर चरण लागे वाजे अणहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

हर हर ध्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिस के ग्रह में आया।

लेख लिखियो तुर माथ एह बिद नानक हर लैन एह बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवां।

सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महल्ला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह न सकूं बिन प्रीतम दर्शन देखन को ता

हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाउ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता हृदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर।

गोबिंद भजन बिन हड़का जल रहाओ। छोड़ सियानप बहु चतुराई, दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुख देह का इहू उत्तम फल। वेद बख्यान करत साधु जन, भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राची जन नानक, हर सिमरन दहन भय मल। टोडी महला पंजवां, माई चरण गुर मीठे। वड्डे भाग देवै परमेसर, कोट फला।

जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, राम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवै दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपूरा भेट्यो बडभागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काट लियो जन अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ न संकट द्वारा, नानक शरण

कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख न सह, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूरन पही आसा, दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महल्ला पंजवां, हर हर चरण हृदय उर तारे। सिमर स्वामी सतगुर अपना।

जल की माछुली चरै खजूर, काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छुपायो रहाओ। पंडित हुए कै वेद बखाने, मूर्ख नाम देवरा मह जाने। कौन को कलंक रहो, राम नाम लेत ही पतित पवित भये, राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रह काहे को तीर्थ जाई। पंडित नाम देव सुकृत।

नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा। मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुरु सतगुरु दान दिवायो रहाओ तिस जन को।

जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर ध्याई सुखदाता जाकांत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राखे उधर मझारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत छ

करना के पट भांडा कह न कोए ऐसा वर्ण भगत मह होए तेरा नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिन दर भीखे आ पाए तिलंग महला पहला घर तीजा इको अंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाहे आ प्यारे

साधन महल न पावै, विण कर्मा किछ पाइयै नाही, जे बहुतेरा तावै, लब लोभ अहंकार की माती, माया माहे समाणी, इन बाती सह पाइयै नाही, पई कामन इयाणी, जाए पुछो सुहागणी, वाहै किन्नी बाती सोह पाइयै, जो किछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए।

ऐसा परमल लाइय। एव कह सुहागणी भैने इन बाती सोह पाइय। आप गवाइय ता सोह पाइय, और कैसी चतुराई। सह नदर कर देख सो दिन लिख कामण नौ निद पाई। अपने कंत प्यारी सासु हागण नानक सास भराई। ऐसे रंग राती सहज की माती एहनिस पाए समाणी। सुंदर साए स्वरूप विचक्षण कही ऐसा सियाणी। तिलंग महल्ला पहला।

सच सुनाए सी सच की बेला। तिलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब आए हुक्म खसमाहू हुक्म सब वर्तनी। सच साहिब साचा खेल सब हर तनी। सा लाहे सच सब उप

रहे अमरा पद पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप सत्संग जी, आप जी वडभागी हो जो प्यार सहित गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के नितां प्रति सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी भला करन, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित दुआरे उबर तितै लहो बार दे मावक अनुसार। जगत जलंदे दे भले वास्ते जो पावन पवित्र श्री सहज पाठ चल रहे हन, आप जी नितां प्रति हाजरियां भर के खुशियां प्राप्त कर दिओ। सतगुरु जी रहमत करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां नूं प्रदान करन। गुरु कृपा करे पढ़िया सुनिया गाविया सतगुरु जी थाएं पाउण। अगाध बोध बाणी पढ़दिआं बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं। आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने, भुल्लां ना चितारदे। फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना, शब्द बाणी पढ़द हुई भुला दे खिमा करना जी। अज जिसने दिता धन धन श्री गुरु गोबिंद महाराज जी के प्रकाश दिहाड़ी मनाए जा रहे हैं, सो आप जी सर्व संगत महाराज जी के प्रकाश पुरब लख लख बधाई हो गण जी। आओ हूं अगला समा सरवण करते हैं। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हम एका जगत में आयो, तरन हेत को दे पठायो। हम एका जगत में आए, तरन हेत को दे पठाए। जहां तहां तुम तरन बिछारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पिछारो। यह काज सरा हम जन्मन, समझ लो साधु सब मन मन। तरन चलावन संत वारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन।
2: कीर्तनाम करके चरण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बेनती कर दें आप जी के चरणों च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देख के धनी हैं, सरबंस दानी हैं, खालसा पंथ के सृजनहार हैं, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना तो बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवीं जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन 31 राग ही मिश्रित हन 62 राग एडा वड्डा खजाना उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने 177 सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू हुई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस वाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए ओही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।